0: करूँ मार,
1: हाथ में किया है
0: करूँ मार, करेगी ये पकड़ूँ मार,
1: नवतार
0: नवतार पकड़ूँ मार, करेगी ये पकड़ूँ मार।